हारून लांत्रा दसम से तीसरा त्रेसी ते देदास देखदा का श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अमरणीय गायक होगे सतुटु मत नर्तन में जनता और लंगावन गायन शैली निशा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इहलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवीकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वन गीत होगे नामे अमरणीय कला होगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सृजु संबंधक अतिकल विलासिता की प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेडकरमिं श्रीलंका बाइला संगीत वगेम अनिकुत गीत जातंत्र वेदिका वलट गिनगिय कलाकार हरुण लांत्रागे गीत अदत उत्सववल विवाहवल सह सतुट अवस्थावल अनिवार्यं अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीविते रसे मतक करवन अमरणीय अंडाक

Tony Hassan, Sri Lanka Sangite sa Hindi Janapriya Sangite Vishesh Sthanya ga Janadrete Adarniya u Gayake. Oge Satutumat Nartaname Vedikav Sajivikarna Gayan Sailya Nisa Oge Baila sa Anikut Gita Loke Prasiddha Namayak Bavata Patuna. Eddas Namse Hattavat Asuva Dasake Baila Sangite Nava Sabdayak sa Sajivikarna Gena Kalakarwe. ओगे गीत वर्ट तिबु सरलत्वे सतुट सा जनताव समग सृजु संबंधे निसा ओगे गायने विशेषत्वयक् गत्ता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्थावलदी ओगे गीत अदत् अनिवार्यं वादने वेनो सिंगल संगीते जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत् वेनो टोनी हसनगे संगीते अदत् जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय Rasaya Matakkarana Amaraniya Handak.

सुनील शांत दस नम से पालवे उपतला भाई दस नम से असुग के साधारण विन्वगे श्रीलंका संगीते पुरोगामी अतिशय गौरवेट पात्र संगीतज्ञ को सह गायक ओ श्रीलंका संगीत स्वदेशीय रसे नव सुरवींसा निर्माणशीलत्व गिना आयक सिंगल संगीते स्वदेशीय हंडक नव मंपेतक सह सत्य रसज्ञना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते हदवतट लंगावन रसज्ञनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माण सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीते इतिहास विशाल सटान कला सुनील शांत के गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्व सा सौंदर्य तावमत जीवमान है।

प्रिया सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुदिन संवेदी हंडत सरल गीत रसिया निशा ओगे गीत अदत जनप्रियत्व अमी नोवी जीवमान पवती हसु दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासिताव किंग प्रीतिमुन निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटान तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ